कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने ओना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन्हां ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर।

0: मेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पीरनी दी चुगी विच पहुंचे हैं। भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जाऊं। कुछ आदास आया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना, नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जी पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल। पीरनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला। रब नू बड़ी भुख लगी बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष। नाम जप के नाम दी प्राप्ति, नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो। जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है। तुरे तां हन जेड़ा तुरे है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा। गली बाती तो पहुंचया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गल्लां नाल अजकल दी दुनिया गल्लां नाल ज्ञान चाहुंदी है। पर भाई महापुरुषां दा कथन है गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार। ए तो बड़ी करड़ी मंसल है औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम हुआर। कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु। महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी। चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस देंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना उस माता कोल चली। मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताईं।

0: मांग दे रही है गवर्नमेंट की तेरी बढ़िया अबर काज तेरे कितने न काम मिल सास संगत भज के बलनाम सरंजाम लाभ भोजन तरन के जन्म था जातर माया के खरा हो
1: जब तब सन...

कौन सिमट पे संक्रे खेटा सगली शिष्ट काय चंबो आजुगा सरु संयंबो और अच्छा मेरी तुम करो सिख बार असिख संगरो दुश्चित देव थुपाता सकल कुलेश करुणा खाता जे अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुख थे मरे पुरख जम पग परे त्यार है तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताकि काल निकटनी आया रक्षा हो सब काला दुष्ट निष्ठ रे तत्काला कृपा दृष्टान जान हरो ताके ताक तरको हर हो सब होई दुष्ट है अच्छा सके न कोई।

नट नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहिब विच एक होर राग सरूप मिलता है, वो है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों कीती है, उत्थे स्पष्ट तौर ते नट नारायण महला चौथा पंजवा आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा। नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकल ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गौंव दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है उलाह नू मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर काल।

उस्माद रूप उस्माद रंग उस्माद नांगे फिरे जंतु उस्माद पौन उस्माद पानी उस्माद अग्नि खेडे वडानी उस्माद धरती उस्माद खानी उस्माद साथ लगे प्राणी उस्माद संजोग उस्माद विनियोग।

बुद्ध सदीप जो उजियारे ज्ञाने की बढ़ने मनो हाथ ले ज्ञाने की बढ़ने।

इतनी सेवा प्रवान करनी। ए वीक सरदार उनका सर गुरुद्वारे से जो इस बबनी बन सकया, सुरवीर जी ने हुक्म किया है अपने गुरुद्वारे रखे हाजरी पर सो थन का दे योग योग की आप जी अपने दुनिया की कम मकाल में त्याग के गुरु महाराज जी चरण सरण की बैठ के अंदर तुम हरी जस हरी कीर्तन बड़ी सरदार ते भावना ना सरण करे महाराज बख्श कर सारे की हाजरी दरते लाऊ सारे दे सिरा दे उत्ते बख्श बरहत रखा ते नाम दान चरना बैठे हो छोली करो परदास कोई रिश्ता फैलन जाए जब

अभूत अलख अपहेस अंगराग ना रंग जाक है जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन अभंगनातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व घायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अन भेख सर्व शास्त्र ना जान।

अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहो साहन साहो राजान राजभानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंग कालान काल अनभूत अंग अभाव।

चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे।

कर्मं नकाय अजन्मं अजाय न चित्रे न मित्रे परे है पवित्र पृथ्वी से अदिश अदृश अकृश भगवती छ।

केसरवत्र राजा केसरवत्र साजा केसरवत्र दीन है केसरवत्र लीन है केसरवत्र जाहो केसरवत्र बाहो केसरवत्र देश है केसरवत्र भेष है केसरवत्र काल है केसरवत्र पाल है केसरवत्र हंता केसरवत्र गंता केसरवत्र भेखी केसरवत्र पेखी केसरवत्र काज है केसरवत्र राज है केसरवत्र सोख है केसरवत्र पोख है केसरवत्र त्राण है केसरवत्र प्राण है केसरवत्र देश है केसरवत्र भेष है।

तन मुदाम अरबर अगंज हर नर ब्रभंज अन घन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस व्यंत अनुभव अनास धीर तुरतरा।

घनन घनन करे मेघवा बरसे, बिजली कड़के तड़क तड़क करे। जिस तरह बिजली कड़कती है, जिस तरह बदलों के बिजली गरजती है, इसे तरह मृदंग दे बोल।

0: आओ ये मृदंग दे बोल पखावज दे बोल ये बड़ा ही वधिया सुंदर गुलदस्ता सानू भी बहुत पसंद है ते जो चीज़ा हन संगीत दियां रचनावां जां बंदशां ये तां मन नूं गायक दे भी लगदियां हन ते सुनने वाले जिहड़े हन संगीत प्रेमी उन्हां नूं भी आनंद आउंदा है। ये सतगुरां दी दात है, इस वास्ते ये साडी खुशकिस्मती है कि धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू बाणी दे नाल रागां दे नाल जोड़िया है। ते असी जदों बाणी सुनते हाँ तो राग सुनते दोवें चीज़ां जदों सानू मिलदियां हन तो साडी भगती हो जाती है, नहीं तो राग तो बड़े बड़े गाउण वाले बैठे हैं होर धर्मां विच भी, ते पर हाजरी जो है सतगुरु पातशाह हजूरी विच सानू जो असीस मिलती है गुरु दरबार विचों गुरु ग्रंथ साहिब विचों ये सानू सतगुरु पातशाह जी ने देण दित्ती है। तो सतगुरु पातशाह जी ने होर धर्मां दे विच बड़े बड़े गवैये हैं बैठे हैं, पर जेहो जिहा संगीत जेहो जिहा राग गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बाणी विच दर्ज कर दिता है वह होर किते नहीं मिलता। मिसाल है, मिसाल के तौर पर ध्यान देना कि सतगुरु पातशाह जी ने मिश्रत राग उचारण किए हैं, होर किसी धर्मां विच जां हिंदू ग्रंथां विच पुस्तकां विच पुरातन पुराने राग जां मिश्रत राग नहीं मिलते। जिस तरह तीन तीन प्रकार के राग हैं, गौड़ी पूर्वी दीपकी तिलंग काफी गौड़ी भी सोरठ भी बारह प्रकार की गौड़ी है। ये सतगुरां की सारी देन है, सतगुरों ने बड़े बड़े राग माझ राग जो सतगुरां की देन है माझे की लोक धुन तो माझ राग बनाया, तुखारी राग ये गुरु नानक साहब का अपना राग है। तो सतसंग जी इस तरह बहुत सारी बाणी ते बड़े सुंदर सुंदर राग गुरु साहबां की देन है, गुरु साहब की बख्शिश है। फिर घरां विच कीर्तन करन दा ढंग पड़ताल गायकी जो है ये सिख पंथ विच है, होर किते नहीं है। तालां नूं बदल के गाउणा रागां दे गुलदस्ते ये सारे सतगुरां की देन है, सतगुरां की बख्शिश है। पुरातन चलिया आ रहे मर्यादा कीर्तन दे विच्चों जो कुछ आप जी नूं भेटा कीता है वह सतगुरां की शीश दे नाल आप संगत दी आशीर्वाद लैण वास्ते भुल्लां चुक्कां दी खिमा।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

कोड़िया पे ही कड़ा जुगला पे ही तेंधारी है, देखे किता अपना दर्क चिपक की सारी है, जो आया सो चलसी सब कोई आई मारी है, जिसके री प्राण है।

कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। Whatever you desire, you shall receive that reward, and you shall not be afflicted by pain any longer. Kache pande saaj nivaje, antar jyot samai. He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his light within them. Jaisa likht likhya tur karte, hum taisi kirt kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaap kiya sab apna, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aavai, mohe anth luptana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो।

सत्यम अर्थ अनेकम अनेकाई सत्यम लोड़वंद पुरुष दाता जिन्हें दानी पुरुष होंगे उन्हें पाप जानते हम एक और दानी पुरुष उन्होंने उसी उस तरह की माया दिंदा है जिस तरह का उतारता है तो इसी तरह ऐसा दसते हम कैसे गुरु सिद्ध आवत है अनेक कैसे गुरु सरण।

विष्माद्नाद विष्माद्वेद विष्माद्जीव विष्माद्भेद विष्माद्रूप विष्माद्रंग विष्माद्नागे फिरेजन विष्माद्पौन विष्माद्पाणी विष्माद्अग्निखे डैबिडाणी विष्माद्धरती विष्माद्खाणी विष्माद्साद्लगे प्राणी विष्माद्संजोग विष्माद्वजोग विष्माद्